0: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
1: इट्स 10 a.m.
0: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
1: थाहा अपडेट

हेलो जुजुल्पा जुजुल्पा जुजुल्पा थैले थगु मोङ इबिया जेजो नेन्त लन्सना दिमा चिता दुङलान से हनम नना पन रसु सई बादन जेसो से गुले पा बनाना वचना क्लागपनी गो संघर्ष अनुभव योगदान नेत वकमनी गो सुन थजगो ज्याय त चाहिँ सम्मान्य से छ वगु खदा छ अलि गुले चेतना संगीत सभाका उता संसारिक विषयवस्तु पकिन केन्द्रित ज्यानी हगु ख ठौ लासे छ संगीत नप्तामा अले छुसुम विषयवस्तु पकिना जी केन्द्र ज्यान ह्याउने जी संसारिक विषयवस्तु नदु दक्षिणाबा जी छिकमा त यंकि तेना संगीत पखे तन गुप्ले कविता गुप्ले मे तजगु भावदुगु मेदु स लय कथन तन स्रष्टा अमरा शर्मा अथे चोसा कथन दि चन्देश्वर महर्जन आइत थमे लसुस कथन दि देशन जनासी पनि निन्ती

हजुर बाजु अमर शर्मा यहाँ सब लस्य थो मे नाइदेला ज्याजो नेवादुपुने स्वादेगुदु नेवादुदुने छि निन्जो वेवका शनिबार आइतबार स्वतः यथा खबरडुङ्का ज्याजो नेवादिफै पिताइतक जुलेजी र टेक्निकल एसिस्टेन्ट निम्ति दुदौं।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: अनुभवी नेमी भाजमा छ दिपा दुङका हाल्नु छ लस्कु सेन्चुरान च्याजो ने अदबु ने चाँदिदु ने अदबु छ जी राजेन्द्र डंगोल वचन नेमले त अले पासदु थौ भीमजी जजो बके थन टेक्निकली ग्वाली चाँदिदु थु जदु ने जी संगीत नाटकमा समसामयिक विषयवस्तु बके न केन्द्र जी आनी हाजिर हुदु आज यंग तिन आज गन त मेगु संगीत बके न उया न थन जनता छ दिन छ पञ्जु मगु छ या थौ खन जी चिन्त पनेगु जी थगु दे बालामा समृद्ध जीमा भीजीमा थन चुनि पिन जनता पिन सुखी जीमा खुशी जीमा जे जीमा देशभक्त तेगु विजात रेख देश खलाबले दक्षिण नपा न्यान वेगु छ दखंख रान्ति रान्ति हजुर अथे रान्ति नपा स्वाबुदुगु मेगु खंख दल पार्टी थन देश दल पार्टी एकदु थोए दल पार्टी याना देशभक्त जनता तथौ विचलित ज्याचङदु दल पार्टी चिचरङ्गो तरङ्गो नोगु फुलाङ्गो तर चिसङ एकको अतिथि दल पार्टी त सोया वै छनौ दु तथे दल पार्टी लुमुङ्की बुले थुम्सा देव जनता निति छुसु ज्या यान चुङदुले सार लिस अनुतर इत नजिफु एक छेउ मुतु बालागु ज्या यत हेगु लिस मवेन फु थ बिसले जिन चिकन त हाग्न तन कनियो जि तन आज यंग दिन मेजो ललता मानन्दर या स्वापखे यंग दिन मति ना हे चुकुला

0: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
1: इट्स 4 पीएम
0: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
1: हा अपडेट

0: காட்டின் லை கட்டி பைசனோ இன்னி பிஸ்கர் பிச்சுது இன்னி பிஸ்கர் பிச்சுதோ
1: மோ ராஜா ஹுசு திமீ பனி தியோன ராணி हुनेछ एक हाम्रो छुट्टै कहानी बनाउला प्रिन्सेस स्वामी खरी खरी दिशा दिने कस्तो तिम्रो पानी
0: अब नचाउन पर पर चानी चानी मन नजिक आउँदा किन हुन्छ पानी पानी पैसा थाङ्की त जान्छ अब सोच्ने पो हो कि
1: मन मिल्ने साथी मलाई रोज्ने पो हो कि